0: तुमको वाह भी
1: ते मानना नहीं अंडरकिन आरा इकोलॉजी के फलों ने मानना नहीं अंडरकिन आरा इकोनॉमिक फारु सानुए मानो फेरुवना जान जो के इतने दे चारी आरुवना फुट निजू फा आताकुज़ याजा उन रो सही लांस इकोनॉमिक सही आफाना मापनरुस न्यूल्ला मंदितना फालंजा फापुआरी आफाना यंग चुमा मेचा के फावे निफिशीना फालंजा फापुआरी देख फानेरेना न्यूल्ला यारु फा फानापीना न्यूल आमनी फिल्टेनन्या अंदावनान्फ

0: क्लास तुमको फाफी
1: जब तांत्रिक नहीं चिया हमले चौचौन रह सका मापियल ना मिपित रह सका चौन रह सका मापतुंगा ज़ेमा को लासा लासो तांत्रिक चिस्तिचन ले रह सका ना रह सा पंजा कान ने फंसे ने फमाज़ा बब्बेया श्रुआ ना तो चिचुआ गिट पंजा कान निम्याचुआ चार जेफ्रा फाइ चौचौन रह सका ना फ्लालोवा ना रह सका मनायिरन Mareth, the Mareth Mittens of Tonzoa, Taman, Athena, Guava, and Abimituari, Manairan. Took at the mass Monatna Fuktanzi, at the Mantan, Aya. But she found the brave and you arrive at the Anamanir and Abuza, but too. The Onatan de Anisantim Miakatra, Lewe, Mandi Il and Senanai, Mat Il, Vart, Zalzai, In and Nato. The Asip Muntadi and the Tantrinumbi. Tupnarek la misi, Raymanden misi, di fasesa ni tetanulla, akotani matata nyul, matawata nyul, fasa fasa artiwa, di sairan nyul. Fa